आखिर ऐसा क्यों? इस भेद नूं जे जानना होवे बखूबी तो फिर भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पुछ करनी पवेगी, भाई साहब जी बाबा फरीद जी ने यह मंग क्यों कीती है, असीं क्यों ऐसी मंग करिए, असीं भी जबकि इतना संसार पदार्थां नाल भरिया होया है और उन्हां दी लोड़ भी है, उन्हां तो बगैर अज जीवन चलना भी बड़ा मुश्किल है। पर भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिता इस गल का, तीन पौड़ियां भाई साहब जी ने उच्चारण कीतियां ने इस प्रति, ते धरती नूं सवाल कीता क्योंकि बाबा जी ने एक पवित्र बचन जो बाबा फरीद जी ने आखिया है, कहन लगे मैं बंदगी दी मांग

चारे पासे सुगंधी फैल गई है। मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है, ए ता कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है। सत सिमरत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता। मैता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक होया ते मैं चाहना हां उसकी जन्म कुंडली तैयार करो। पंडित हरदयाल उठ के बैठा, मेहता जी नु बिठाया कोल, कालू जी नु मेहता कालू नु कोल बिठाया, पुछया कितने बजे होया बालक, आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदों लिखन लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मैनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा, क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा के मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हो। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। सत सगत बोलो श्री। ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नु इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नु मेहता कालू नु वधाइयां मिल रही हैं। आज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है। प्यारी सात संगत, आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कलातार जग में परवरे हो। आप नारायण दा रूप

अजूनी सैभंगुर प्रसाद, अजूनी सैभंगुर प्रसाद तक जदो गुर प्रसाद तक जदो आवाज आई, ता गुरु नानक सच्चे पातशाह भी

பயிர் வேய் வச்சு டூபுகே. बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी कहन लगी किवे ना आखो मेरा नानक संसार विच डुबण वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारण वास्ते आया है. नानक कदे डुब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा. समा पा के जदो निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डुब गया. लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है वो कदे डुब नहीं सकदा. ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया आवाज आई बेबे करतार चित आवे उठी बजी बेबे नानकी मेरा वीर आ गया. जां बुआ

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पाओगे तां इन्हां कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना है। साथ सिखत बोलो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या करदे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ये सारियां सिफरां हन, सिफरां ये सारे जीरो हन, और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा, एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाएगा, दो जीरो पावेगा सौ, तीन पावेगा हजार। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड हन, जप तप हन, बिना नाम तो जे ए करेगा ता तेरे मन नु हंकार हो जाएगा और कीते हुए तेरे कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणा। सत सिखत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन दे पातशाह बाणी विच कहंदे हन, प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका

0: हे मेरे मन, उस करते पुरख दी आराधना कर। हे मेरे मन, उस करते अकाल पुरख दी उस्तत कर। वड़ियाई कर, कीड़ा करता अकाल पुरख जिन्ने सारा जग बनाए, जिना सब कुछ कर करा रहे ओ करता, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ करने योग है, उस करते पुरख दी सलाघा कर। हे मेरे मन, एक मिनट भी उस करते पुरख नू विसारना, याद रख वो करता पुरख जिसने तेनू संसार ते भेजे है, तू ओदी वड़ियाई विच जुड़ जा, ओदी बेअंतताई विच लग जा।
1: मन मेरे करते नू सलाघा।

करो सदा प्रभ अपने मन मेरे करते नू सहलाए। होर वस्तुआं दी बड़ी उस्तत कर दे, ऐ चीज बड़ी खूबसूरत, ऐ चीज बड़ी चंगी, ए भोजन बड़ा सोहना बने, बड़ा स्वाद लै, ऐ वस्तु बड़ी ही अच्छी है, एदे वर्गी संसार ते कोई भी चीज नहीं। होर बड़िया उस्तत कर दे, बड़ा कुछ आखद, मनुख की भी उस्तत बड़ी कर दे, पर जिदी उस्तत करन योग है वो असी कदी कीती नहीं, कदी उसनू सलाया ही नहीं कि असली जिहड़ी उस्तत करन वास्ते असी संसार ते आए हां उते कीती नहीं। ऐसा ही सवाल मरदाने दे अगे साहिब गुरु नानक साहिब ने कीता, आखिया मरदाने आ की करन, आखदा साहिब जी लोकां दी उस्तत करन ते अपना घर दा गुजारा चलान, ते साहिब आख लगे मरदाने आ लोकां दी उस्तत ना कर, आ मैं तेनू अकाल पुरख की उस्तत करनी दसा, अकाल पुरख की उस्तत कर, यह तो उस्तत झूठी है लोगों की करनी, अकाल पुरख की कर, यह सच्ची उस्तत, यह उस्तत करेगा कभी भी भुखा नहीं रहेगा। यह गुरु नानक का वर हो मरदाने, साहबा ने उस्तत दे विच ला दिता, आप भी जुड़ जाते सन ते मरदाने नू भी जोड़ लेंदे सन, चल मरदाने आ बाणी आई आ छेड़ रबाब, कीर्तन विच लीन हो जाना ते अकाल पुरख की उस्तत करनी। ओही जोत सानू उपदेश कर रही है, हे मन अकाल पुरख की उस्तत कर, मन मेरे करते नू सहलाए, उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

खलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, खलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच, दीपक प्रकाश कटे प्रीत ना पतंग की, उस सुभास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना बिहंग की कटाकन को।

अकाल पुरख से यदि अरदास कर रहे मंगदे पीएम शुभ कर्म अपने वास्ते में आप तो निरंकारी ज्योत आप तो निरंकार का ही स्वरूप पर दास अकाल पुरख को किस वास्ते मंग रहे हैं साढ़े वास्ते मंग रहे साडे वास्ते ये महान वड्डी दा शुभ कर्म देह शिवावर मुहे से है शुभ कर्मन से कम हूं ना करो शुभ कर्म शुभ कर्म ही सबको वड्डी दा बाबा जी बच्चे करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए विहार निर्मल होना चाहिए परमार्थ तो सदा ही निर्मल जिसका विहार पवित्र है विहार सच्चा से सच्चा हो गया उसका जीवन विहार हो रहा है दिखावा हो रहा है वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन तो शुभ कर्म की विशेषता है सबको ज्यादा शुभ कर्मा नाल ही दुनिया विच कामयाबी दुनिया भी सत्कार कर दी है जिदे कोल शुभ कर्म तो अजकल भी दर्शन जी असा कलयुगी जीवां दे वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हैं देह शिवावर मोहे से है ते ये भी कहते हैं कि कलगी दा सतगुरु जी ने शिवजी महाराज की अरदास की सबने शिव नाम जो है वो अकाल जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं असली उसका नाम महादेव सतगुरु जी ने आप फरमाया है महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत मैं भेद महादेव लोग शिव से उस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला हो रब की बंदगी करने वाला लोग कहते भई ये तो रब रूप ही क्यों रब नाल जुड़े इसे तरह महादेव शिव जी किया जाता है पर असल में शिव नाम अकाल पुरख उस अकाल पुरख दे के कलगी धर दशमेश पिता जी ने ये अरदास की थी ते ए वर मंगिया दे शिवा वर मुड़े के है कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साढ़े बार तो जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्होंने दुनिया जय जयकार अज मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जिन्हां नूं फतेह हासिल होई धर्म की तज खड़ी कर दिती आखो श्रीवान धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दियां कलां च फतेह प्राप्त नाशवंत पदार्थ

Marta Kunigi. एक दिन आपने अपनी प्रशादा तैयार की, मन प्यार से सता रहा है, आप रसोई च बह के गुरबाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, भोजन तैयार किया, एक ख्याल कलगी का किसी पातशाह जी ने अज अपने अपनी प्रशाद किया। माता गुजरी जी जिसे कलगी का किसी पातशाह जी ने पुत्र जान के पूर्ण प्यार भी करते हैं, उसे धन गुरु नानक की गद्दी के मालिक जान के पूर्ण सत्कार भी करते हैं। सिख ने बुलाया जा सिखा कवि जी ने बुला के लिया, सिख आए हाथ जोड़ के अरदास की थी, बहुत लोकी नाथ सदगुरु माता जी याद करते सतगुरु श्री लक्ष्मेश पिताजी थे आए, नमस्कार की थी माता ने, सोना आसन बिछाया हुआ बैठ प्रसादे का थाल परोस के हजूर दे के रखे। कवि जी साहबजादे भी आ जाते सचन माता गुजरी जी दसवें पातशाह जी ने कवि जी करके बुलाने नाम नहीं सी लेंदे क्योंकि छेवें पातशाह जी का नाम सी श्री गुरु हरगोबिंद साहब, दसवें पातशाह का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। अदब करते सन नाम नहीं सी लेंदे कवि जी करके बुलाने। मेरे हजूर ने जो कुछ माता ने वचन किया उन्हों सफल करते हैं, जितनी बाणी उचारी है उपर लिखे कवियो बात आखो श्री वाहिगुरु कवियो बात। साहबजादे भी आ जाते इशारा किया सिख भजा गया साहबजादे भी आ चार आसन होर भी साहबजादे बैठ चार थाल होर परोसे इन्हों के अगे भी रखे। साहबजादे मेरे कलगी रस्ते पातशाह जी भोजन छक रहे हैं, ते माता गुजरी जी वेख वेख के पिछर दी कोई मन ख्याल आ गया कवि जी हुण साहबजादे जवान हो गए इन्हों को परिवार देखो ना कितने सुंदर मुख रहे चौड़ियां छाती कितने सुंदर शरीर मेरा चित कर रहा है इन्हों दी हुण शादियां कर दे शरीर का कोई पता नहीं मन दे अंदर एक ख्याल आया अपने हथी वेखा इन्हों नू घोड़ियां ते चढ़ा तो हजूर मुस्कुराहट है सतगुरु सच्चे पातशाह मुस्कुराए मां जी साहबजादियां दी शादियां हां मेरी इच्छा है मेरे दिल की एक तमन्ना है। हजूर कहन लगे मां जी फिर फिक्र न करो मंगनियां तो इन्हां दियां हो चुकियां हन ते शादियां दियां तारीखां भी नेड़े ही हन। हैरान हो गई मां जी माता गुजरी जी कवि जी मंगनियां कर दी हां मैनू दसिया ही नहीं तुसी अपने आप ही मंगनिया की फिर ख्याल रखे जे विवाह वेले शादिया वेले आनंद कारज वेले मैनू जरूर याद कर। हजूर कहन लगे मां जी जिस दिन साहबजादियों का जन्म होया मंगनिया उस वेले हो गई हम तो विवाह दियां तरीखां भी नेड़े हैं। अच्छा फिर मैनू हजूर कहन लगे फिक्र ना करो समा आएगा दो दी जंज असी चमकौर लै जावांगे ते दो दी जंज तुसी सरंद लै जाओ कि आखो ए रमजा सन पर भोली माता नु की पता
कि सदगुरु किससे बोल रहे हो, समा आगे पहली खास संगत अनंतपुरी छड़ थी, सरसा नदी पार होए मेरे कलगीधर सदगुरु जी दो साहबजादे तो हजूर दे नाल हन, ते फिर ए मासूम रूहां कलगीधर दे लखते जिगर बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ते ए बृद माता माता गुजरी जी फिर खच्चर ते चढ़े हुए ते जा रहे नाखुर श्री हुए कटक दी सर्दी। अज फतेहगढ़ साहब महान वड्डा एक मेला लगा हुआ दास नूं कई वारी इस महान समागम से उसे हाजरी भरन का समा मिले है। मेरे परम मित्र यानी मिंदर सिंह जी एडिशनल सिकत्तर श्रोमणी कमेटी ने इस समागम से हर साल ही चिट्ठी पाते ऐसी भी पत्रिका आई पवेगी तो प्यारी खास संगत अज उसे बड़े दीवान लगे हो तकरीबन जितने साढ़े मिनिस्टर हैं सारे उसके पास बड़ा प्रभावशाली दीवान बड़ी दूरों दूरों दुनिया उसके फिर प्यारी खास संगत इस महान समागम उतों की मिट्टी उतों की खाक जो साहबजादियों के खून के नाल पवित्र से पाक हुई हुई है दुनिया के मत्थे ते लांदी इस तरह माता गुजरी बड़ी सर्दी है उसकी अच्छा अपने पंजाब दे तुसी सारे पंजाबी हो तुहानू पता है कि अजकल उसके मौसम बड़ा ठंडा हो फिर किस तरह माता गुजरी जी अपने कोतरिया नू नाल लेके ठरू ठरू कर दी अपने सोने पुत्र तो जो गुरु नानक दी गादी दा मालिक संगतां दा मालिक उस तू विछड़ के जा रही है खोचरी बारी नाल कौन है गंगू ब्राह्मण फिर ए शाम नू आपां विचार करांगे कि किस तरह मेरे कलगीधर फतेह पातशाह जी की साहबजादी माता गुजरी नाल जा रहे गंगू ब्राह्मण नाल किस तरह गंगू दे घर पहुंचे गंगू ने जो कुछ धोखा किया फिर माया दे लालच च आके प्यारी खास संगत गंगू ने मेरे कलगीधर दे बच्चियां नूं पुलिस दे हवाले कर दिता खुशी जो है फिर जिस तरह सरहंद पहुंचे वजीदे नाल जो बचन विलास होए और फिर रात में रात जब की सुख जयंती करांगा तो आओ आओ बड़े पागा वाले जो भाई साहबजादियों की शहीदी का पुरब मना रहे जो अमर ज्योता है अमर ज्योति अमर धर्म उन्होंने सच नाल प्यार किया आओ आप भी अरदास करिए कलगीधर फतेह पातशाह मेहरा दे साई असी भी तेरे बच्चे हैं आखो श्री वाई साढ़े से मेहर करो सानू भी उस मत बख्श असी भी धर्म नाल प्यार करिए तेरे चरणा नाल जुड़िए ना सुंद चीजा नाल प्यार ना करिए इन्होंने तो बिरस जाना है अरदास करिए ते की मंग मंगिए दे जीवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूं न डरो न डरो अर्शो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो पाकिस्तान से हिंदुस्तान का जंग होया है फिर कलगिया वाले दे सोने खालसे ने ए वर लैके ते इस तरह कर दिखलाया कुछ नहीं भाई कर दिखलाया पहाड़ियां गोजदियां सर पहाड़ी सिखा की बहादुरी नु दुनिया मन गई ये कलगीधर की बख्शिश है खालसे ए मेहर है जो वर मंगे है खालसे वास्ते फिर भाई कलगीधर फतेह पातशाह अकाल पुरख तू वर मंगण ते वह दात ना मिले मिली पर हजूर ने फिर सानू वंड दी आखो जिथे दुनियावी दातां वंडियां हैं राज भाग दिता है उथे ए दात भी सी है प्यारियो जे ए दात ना होवे तां राज भाग नहीं रहिंदे आखो श्री वाहिगुरु
दे शिवा वर मुए है। शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरो न डरो अरसो जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो ये सिख हूँ अपने ही मन को। ये लालच है गुरु सहित चरो जब आओ की औग निदान बने अत हिरण में तब चू। साहबजादे चर्दियां करा जाके इन्हों के मन के अंदर एक जज्बा तो आओ उन्होंने याद जुड़े गए बड़िया पागों वाले ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਜੁੜੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸੱਭੇ ਟੁੱਟ ਜੋ ਨਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਵਿਛੜ ਜੋ ਗਿਆ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟ ਜੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟਾ ਡਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਈ ਪਵਨ ਉਡਾਏ ਡਾਲੀ ਪਈ ਉਡੀਕਦੀ ਕਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਸਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖ ਸਰਬਤ ਮਾਈ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਖੀਰਲਾ ਛੱਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁਰਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੁਲਤੁਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਤ ਹੈ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੁਝ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਜ

यूं ऐसे दंत कलेश में खपियो संसारा तह बिन सतगुरु को नहीं पहले तनहारा गह ऐसे खड़